सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: अरिजीत सिंह और प्रिया सुरैया की आवाज में जैसे मेरा तू शेफ मूवी से ब्यूटीफुल गाना ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम। तनिषा आगे जी आपकी सैड बिंदास मॉर्निंग्स लेकर मैं ऑल ओवर रिचार्ज पे जा रही थी दोबारा से आई डोंट नो ऐसे मेमोरी फ्लैश हो गया यू नो कोल्ड हुआ तो शायद दिमाग पे असर हो गया। वेल अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान, 22nd ऑफ सितंबर है आज, ट्यूजडे का दिन। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कल का दिन कैसा रहा आपका, आज के क्या प्लान्स हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सब जानना चाहती हूँ। एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेजकर पेश ही तो लगा दो यार एक बार।

0: वही तो बात है, इसीलिए तो बार बार कहती रहती हूँ कि मुझे बता तो दो कि आप मुझे सुन रहे हो।
1: रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल रो रोए बिछोरी बोले से।
2: यार कमाल ट्रैक है यार ये तो।
0: मूवी धूम एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फुल नॉस्टैल्जिक हिट होने वाला है।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई।
0: ये आपकी और मेरी बात हो रही है आपको पता है ना, तो आओ फटाफट से मैसेज करो 3311-1063 पर। एंड दोज हु आर ड्राइविंग राइट नाउ इट्स ओके, आई विल वेट। आप अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंचिए, एकदम यू नो केयरफुल होके ड्राइव करने का है, फोन वो नहीं यूज करना है वाइल ड्राइविंग, बस मुझे सुनते रहो। मैं हूँ आपके साथ, बढ़िया गाने चला रही हूँ अभी, मोहित चौहान की आवाज में भेज रही हूँ बेबी डू और डाई से कौन है वो। सुन रही है रेडियो 106.3 FM जी, बिंदास मेरी जान।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
4: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
5: Hi everyone, this is Benny Deol here.
6: Benny Deol here.
5: Olive Radio 106.3.
6: Jio Bindas.
5: Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: तनिषा जितनी आसानी से अरिजीत सिंह ने कह दिया इतनी सी बात तो नहीं होती है ये, है ना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर मैसेजेस पढ़ लेते हैं भाई। नाजरी जी का मैसेज आया है, अ ब्यूटीफुल डे इज वेटिंग फॉर यू, गुड मॉर्निंग, आई होप वी ऑल हैव अ ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक डे। एंड अबरार जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है, मलिक फारूक जी का भी गुड मॉर्निंग आया है, संदू जी का भी मैसेज है यहाँ पे, एंजॉय योर डे एंड बी हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड गिव यू स्माइल्स अटेंशन एंड ड्रीम्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे मे गॉड लिखना था, मे गॉड गिव यू स्माइल्स अटेंशन एंड एवरीथिंग। एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज है, ही सेज हाफ ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर बाय एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम रॉन्ग पीपल एंड द अदर हाफ बाय सर्चिंग रॉन्ग थिंग्स इन गुड पीपल। सो सो सो ट्रू। ये ना देर से समझ में आता है, बट जब समझ में आ जाता है और अमल कर लो ना तो जिंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। एंड वी हैव जुल्फी जी का गुड मॉर्निंग, ही सेज नो पावर इन द वर्ल्ड कैन डिफीट अ पर्सन हु हैज़ गुड फ्रेंड्स, गुड रिलेटिव्स एंड गुड थॉट्स। गुड थॉट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का ऑब्वियसली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारी थॉट्स ही डालती हैं हमारी हर चीज़ पे। सो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। राजीव जी का मैसेज आया है, किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू अक्सर रह जाती है। दिस इज सो प्रोफाउंड, सो ब्यूटिफुल एंड सो डीप। मतलब यू नो दे से कि आप वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर गिविंग टू पीपल ना, दैट इज हु यू आर, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। सो अगर आप प्यार बांट रहे हैं तो वो क्योंकि आपके पास इतना प्यार है देने के लिए, सो जस्ट बी काइंड। और जब आप यू नो काइंडनेस और उस वॉर्मथ और लव के साथ आगे बढ़ते हैं एंड यू नो ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल, कोई ऐसी चाह के भी किसी का दिल नहीं दुखाते, चाहना तो कभी चाहिए ही नहीं, अनइंटेंशनली भी किसी का दिल नहीं दुखाते, सो यू मैनिफेस्ट ऑल दोज थिंग्स फॉर योर सेल्फ और वो आपको 10-fold में मिलती है। एंड दिस वर्क्स यार, दिस इज 110% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ काम करती है। जब आप साफ दिल से कोई काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, किसी का दिन बना देते हैं, प्यारी सी स्माइल दी, आपका पूरा दिन इतना बेहतरीन जाएगा ना, आपको हर जगह 10-fold में वो स्माइल मिलने वाली है। आई एम टेलिंग यू, आज स्माइल से ही शुरू करके देख लो, फिर बताना कल मुझे कि तनिषा ऐसा हुआ था या नहीं, ठीक है। सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून एंड जियो विद अस।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
2: Arshak Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
1: at QNCC Hall No. 5.
2: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
1: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में धूम से दिल बराउली ऑन रेडियो ऑल ओवर 6.3 एफएम तनिषा आपके साथ पिताज मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड ये जो धूम मूवी में अली का कैरेक्टर था उदय चोपड़ा ने जो प्ले किया था ख्याली पुलाव जो एक सेकंड में पका लेते थे, जिस लड़की ने प्यार से बात करी भाई उसे शादी के सपने देख लिए. हम भी करते ना ऐसे, नॉट शादी के सपने, नो, बस रैंडम चीजों पे ख्याली पुलाव पका लेना है ना, होता है. आई टू डू दैट अलॉट. मतलब से आई थॉट कि आई वेंट टू शॉपिंग, मैंने एक ड्रेस बस देखी है अभी, मैंने उसका प्राइस भी जाके चेक नहीं करा है कि वो मेरे बजट में आ भी रही है या नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं करी है कि मैं इसे इसमें मेरा साइज है भी या नहीं. आई विल स्टार्ट थिंकिंग अरे मैं वहां जाऊंगी तो मैं ये पहन सकती हूँ, मैं इसे इस तरह से डिजाइन करूंगी, स्टाइल करूंगी और मैं इतनी सुंदर लग रही होंगी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. एंड देन एंड में या तो साइज नहीं होता है या फिर वो बजट के बहुत ही बाहर होती है. एंड आई थिंक ये चीजें हम सब करते हैं. वेल, देयर इज दिस रियली अमेजिंग जापानीज लेजेंड व्हिच सेज इफ यू गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन गेट ऑफ एट द नियरेस्ट स्टेशन. ठीक है, इफ यू गेट ऑन द रॉन्ग ट्रेन गेट ऑफ एट द नियरेस्ट स्टेशन द लॉन्गर यू वेट द मोर द वे बैक विल कॉस्ट यू. एंड इट इज नॉट अबाउट ट्रेन्स, इट इज अबाउट लाइफ. जी हाँ, अगर कहीं पर भी आप अपनी जर्नी में कहाँ पर किसी भी रास्ते पर पहुँच चुके हो, किसी भी स्टेज पर पहुँच चुके हो, अगर आपको लग रहा है दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, इमीडिएटली गेट ऑफ दैट स्टेज. बिकॉज क्या फ़ायदा है, ये रिग्रेट बढ़ता जाएगा टाइम के साथ और जो चीज़ यू आर मेंट टू डू आप उससे और दूर होते जाओगे, उसमें और ज़्यादा वक्त लगता जाएगा. इवेंचुअली आपने घूम के वहीं पहुँचना है, विद वट एवर इज मेंट टू बी डन बाई यू ना, वो आपने घूम फिर के करना है. या तो आप एक डिटोर लोगे लंबा सा उसके बाद आओगे, या फिर अगर आपको इमिडिएटली अभी रियलाइज हो रहा है और आपने उस पर एक्शन ले लिया तो चीज़ बेहतर हो सकती है. जस्ट ए रिमाइंडर फॉर यू इन दिस मॉर्निंग सेंडिंग फिर मोहब्बत इन द वॉइस ऑफ मोहम्मद इरफान. स्टे ट्यून्ड एंड ट्यून्ड इन दिस.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Danisha.
1: Danisha. आबिदा परवीन और राहत साहब की आवाज में क्या कमाल गाना यार. कोक स्टूडियो से छाप तिलक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और ये जो हमने सुना ना गाना, दिस वॉज एक्चुअली द रिहर्सल. सो द रिहर्सल वॉज सो ब्यूटिफुल, सो फ्लॉलेस एंड परफेक्ट कि जो डायरेक्टर्स थे उस वक्त उन्होंने कहा कि हम तो यही रखेंगे, हमें चाहिए ही नहीं फाइनल टेक, लेट इट बी. So weather is 31 degrees right now and it feels like 40 degrees. क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ है? जब ये 40 होता था तो ये हमें 43, 44 के नीचे नहीं फील करवाता था. अब ये 31 है तब भी ये 40 पे रहा है. भाई थम जाए यार. साथ में हवा जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है. हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 38 हो सकता है, लोएस्ट 31 अभी है ही. मैं आपके लिए एग्जाम्पल हूँ कि इस वेदर में कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे आप मेरी पोजीशन पे आ जाओ. इस कोल्ड के साथ बहुत मुश्किल हो रही है, मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट कर पाना इतना डिफिकल्ट काम हो गया है बिना कफ किए या फिर बिना रुके, क्योंकि नाक बंद हो गई है. कभी एक साइड से बंद हो जाती है, कभी दूसरे साइड से बंद हो जाती है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मेरी जान, एंड मेक श्योर कि यू नो बहुत सारा फ्लूइड ले रहे हैं आप, पानी वानी पी रहे हैं, और साथ में ऐसे ठंडा गर्म वाला सिचुएशन मत करो कि गर्मी से आए हैं एकदम बाहर से और एसी के नीचे खड़े हुए हैं, ठंडा पानी पी लिया है फ्रिज से निकाल के. डोंट डू दैट प्लीज. ख्याल रखो यार अपना. हाँ, एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
0: रेडियो

0: बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.

0: टास मॉर्निंग, टास मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा टास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: पैपॉन की आवाज में अहम नवा फ्रॉम द मूवी हमारी अधूरी कहानी तनीषा के साथ सुना अपनी रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर तो आज का मेरा लेम जैम्स का सवाल एकदम आसान है और ये मुझ पे एकदम फिट बैठता है क्योंकि मैं कमरे के अंदर भी हूँ और मैं सिक भी हूँ. सो द क्वेश्चन इज अगर कोई बीमार कमरे के अंदर हो तो उसे क्या कहेंगे. अगर कोई बीमार इंसान एक कमरे के अंदर है तो उसे क्या कहेंगे. हिंट में दे देती हूँ कि एक वर्ड का आंसर है एंड इट इज अ नेम. अगर कोई इंसान बीमार हो और वो कमरे के अंदर है तो उसे क्या कहेंगे.
1: कहो मैं अब क्या
0: सवाल है इस वक्त तो
1: तेरे इश्क ने यारा ऐसा नाच नचाया.
0: हां जी धुरंधर मूवी से ज्योति नूरा की आवाज में और इसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ. लव द मूवी लव द ट्रैक.

1033111063 पर कि अगर कोई कमरे के अंदर बीमार हो जाए, मतलब कोई बीमार है और वो कमरे के अंदर हो, तो उसे क्या कहेंगे? मैसेज कीजिए फटाफट से, सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
0: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
2: Hi guys, this is Bharat Shetty Khurana aur aap mujhe sun rahe ho Radio Olive.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जेस निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Danisha. Danisha.
1: ज्योति नूरा की आवाज में धुरंधर से तेरे इश्क नहीं आ रहा है सन नाच रचा है ऑली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. तो मेरा जो सवाल था लियाम जेम्स का वो था कि अगर कोई बीमार हो और वो कमरे के अंदर हो तो उसे क्या कहेंगे. एंड द हिंट वाज इट इज जस्ट वन वर्ड एंड इट इज अ नेम एंड आई हैव गॉट द आंसर्स. यस, बिजॉय जी का मैसेज आया है, मुझे शाह का मैसेज है, एमएनए का मैसेज है, एंड देयर इज संदीप फैजल जी का मैसेज है, अथरा का मैसेज है, देन देयर इज जिया, देयर इज मोहम्मद, देयर इज वाहिद. एंड सब के जवाब सही है दोस्तों. यस, द करेक्ट आंसर इज सिकंदर. एंड मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसे मेरी लेमनेस में मेरा साथ दे देते हो ना, मेरा दिन बन जाता है यार. तो इसके लिए थैंक यू है मेरी जान. इसी बात पे आप डिजर्व करते हो एक जबरदस्त हिट जो कि भेज रही हूँ मैं आपके लिए आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरी की आवाज में लैला मजनू से ओ मेरी लैला. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
2: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
4: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं. यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा.
5: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा. रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज.
4: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट आज ही बुक करें. धरोहर मिस मत करना.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: Danisha.
1: Sorry, Gavar Shreya Ghoshal ki awaaz mein. Main hoon a movie se title track only on Radio Olive 106.3 FM. Danisha, aapke saath bindas mornings chal rahe hain yahan par, and aapne bhi stress lena hai. Main hoon na yaar. कतर में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, सब की जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगी. सो कतर रियल एस्टेट फोरम होने वाला है 2026 का 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक, और इसका वेन्यू है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर. ये फोर्थ एडिशन है कतर रियल एस्टेट फोरम का, एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन पार्टनरशिप विद सिटीस्केप कतर. ये जो फोरम है, इट विल फोकस ऑन चेंजिंग रोल ऑफ रियल एस्टेट एज एन एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दैट इज सो ट्रू. और जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो है रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल चेंजेस. इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकेंगे. सो यू नो, इफ यू आर एन एंथुजियास्ट, यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, और आप प्लान कर रहे थे कि यार लेट मी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये हेल्प करेगा, सो डू चेक इट आउट. डेट्स फिर से बता देती हूँ, 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक. सिंधरे रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
2: All visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
3: Alshank Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
2: at QNCC Hall No. 5.
3: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
2: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. सो कतर में एक नया लग्जरी लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म आ गया है, दैट इज लुमेरा. और इसका जो इनॉग्रल 6-day एग्जीबिशन है वो 9th से लेकर 14th नवंबर तक होने वाला है द नेट दोहा में. और ये जो एग्जीबिशन है इसमें 80 क्यूरेटेड एग्जीबिशन स्पेसेस होंगी जिसमें 8 लग्जरी कैटेगरीज होंगी, फाइन ज्वेलरी एंड वॉचेस, हॉटी कुट्योर एंड फैशन, ब्यूटी एंड परफ्यूमरी, आर्ट एंड कलेक्टिबल्स, होम एंड इंटीरियर डिजाइन, रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, बीस्पोक सर्विसेज, everything will be there. So Lumera jo hai, it is currently selecting regional and international luxury houses and creators. Aur participants jo hai wo event ke nazdeeki date ke dauran announce kar diye jayenge. Jo selection hai wo focus karta hai craftsmanship pe, heritage pe, provenance pe, storytelling pe, rather than simply you know aao aur aakar apni cheeze exhibit kar do. No, all these things has to be there. And this platform is designed to connect luxury brands with private clients, collectors, entrepreneurs, business leaders and luxury consumers from Qatar and the wider GCC. And when you come to Qatar, you see a different kind of lifestyle, you know, you want to adapt that. So all these things would help you with that. Lumera jo hai, draws inspiration from Arabian heritage, craftsmanship, hospitality and equestrian culture, combined with a contemporary luxury perspective. जो ऑर्गेनाइजर्स हैं लुमेरा के वो इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं.

सकते हैं एज बॉर्न इन दोहा क्रिएटेड फॉर गल्फ कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. सो जरूर चेकआउट कीजिएगा द क्यूरेटेड लग्जरी वर्ल्ड इन दोहा लुमेरा. एंड इस एग्जीबिशन को मिस मत करना 19 से लेकर 14 नवंबर तक. और सुनते रहे रेडियो ऑलिव. जी बिंदास.

0: है सब?
1: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
0: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7777000525 पर।
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
0: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं, सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.

0: हमेशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

You're listening to Radio Oliver 6.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. And I have a very serious question to ask you guys. You know that weekends for me are like my laundry day and mere liye bahut important hai wo. Mujhe bahut pasand hai ye kaam. So, ek cheez mujhe kaafi bother kar rahi hai kaafi waqt se. Aap bhi batayega agar aapke paas koi jawab hai iska. कि ये जो वॉशिंग मशीन के मिनट्स दिखाता है वो रियल क्यों नहीं होते? अगर उसने 30 बोला है तो वो 30 में क्यों नहीं खत्म होता? व्हाई डज इट टेक मोर देन दैट? क्योंकि मैं तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी चीजें प्लान कर लेती हूँ ना यार, और फिर मैं लेट हो जाती हूँ. तो व्हाई? मतलब ओके, पानी भरने में एंड एवरीथिंग में टाइम लग जाता होगा, यू नो. तो आप हमें वो 30 की जगह 40 दिखा दो, 38 दिखा दो, जितना बढ़ रहा है उतना दिखा दो. But ये थोड़ी चीटिंग सी फील होती है. Do you feel that too? ऐश्वर्या राय अगेन, कमाल.

0: और ऐसे कमाल गानों के लिए भी मेरे साथ ही बने रहिए Only on Radio Olive, Trio Bindas.
1: Cool song.
2: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
1: Cool Song.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. बिरयानी खा खा के पेट निकल गया है और एप्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं. ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ.
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai. स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं. स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है. शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए. द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर. ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर. ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026. द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The news up case said been this morning's show right now.
1: Wacky wisdom.
0: So, आज हम जानेंगे कि टेनिस ब्रेसलेट सुना होगा ना आपने, एक डायमंड का पतला सा ब्रेसलेट, उसको टेनिस ब्रेसलेट बोलते हैं एंड लेडीज आर एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट इट. अब तो नेकलेसेस भी आने लग गए हैं उस नाम से. तो ये नाम कैसे मिला उस ब्रेसलेट को? कोई इंटेंशनली कोई ज्वेलर बना रहा है और वो ये सोच के तो नहीं बना रहा है कि भाई इसका नाम हम टेनिस ब्रेसलेट रखेंगे. So there's a story behind it. Yes. So 1978 में मैच चल रहा था टेनिस का एंड लेजेंडरी क्रिस एवर्ट वाज प्लेइंग और शी वाज वेयरिंग अ पतला सा डायमंड का ब्रेसलेट. ठीक है. और खेलते खेलते एकदम से उनका ब्रेसलेट गिर गया. मैच बीच में रुक गया. सबको लगा कि शायद यू नो समबडी इज हर्ट, कुछ हो गया है, कोई इंजर्ड है. पर नहीं, क्रिस का जो ब्रेसलेट था वो बहुत प्रेशियस था, डायमंड का था, और वो गिर गया था. उसे ढूंढने के लिए उस मैच को रोका गया था एंड इट बिकेम यू नो हेडलाइंस इन एवरीथिंग एंड दैट्स हाउ वी गॉट द नेम टेनिस ब्रेसलेट. सो या एनी ब्रेसलेट विच हैज छोटे छोटे डायमंड्स यू नो ऐसे इन सीरीज इन लाइन, दैट इज टेनिस ब्रेसलेट फॉर यू. एंड इट इज क्रेजी कि किस तरह से वो जो ब्यूटिफुल और आइकॉनिक ज्वेलरी पीसेज हैं वो अपने नाम से जाने जाते हैं और हमें उनके पीछे की स्टोरी भी नहीं पता होती है. नाउ यू नो. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Ready? To learn,
2: yes.
1: To play,
2: absolutely.
1: To grow,
2: with Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स.
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
0: जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ. सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं लक्ष्मण राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. चाइना इज एट इट अगेन. कुछ बहुत कमाल कर रहे हैं वो. सो चाइना हैज स्टार्टेड पुटिंग साइंटिस्ट की पिक्चर्स ऑन बिलबोर्ड्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग सेलिब्रिटीज और एक्टर्स के पिक्चर्स ऑन देयर. बिकॉज उनका कहना है कि अगर बच्चों को इंस्पायर करने के लिए ही कुछ लगाना है हमें यहाँ पे, तो क्यों ना उन लोगों को दिखाया जाए जिनकी वजह से हमारा फ्यूचर जो है वो बेहतर हो रहा है, जो एक्चुअली सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहे हैं. एंड दैट इज सच अ गुड थॉट. एक्चुअली ये होना चाहिए, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में हम कितनी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को एफिशिएंट बना दिया है, पर हमें पता ही नहीं है उसके पीछे की स्टोरी कि वो कहाँ से आई है, किसने बनाई है, किसका आइडिया था. सो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव आई थिंक, एंड अदर कंट्रीज शुड ऑल्सो फॉलो द सूट. लेट्स होप दे डू. फिलहाल बढ़िया गाना भेज रही हूँ आपके लिए. सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ थ्री बिंदास.

0: क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.

0: खास मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई आखिरी घंटे में पहुंच चुके हैं हम.
2: मैं तो हुआ तेरा साहिबा, मैं तो हुआ तेरा
1: मुसाफिर कैफे से. एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर मुसाफिर कैफे का सीजन 2, कि आगे क्या होने वाला है. बुक तो देखो पड़ी हुई है तो मुझे बुक का पता है, बट वी नेवर नो कि यू नो सीरीज में ये लोग क्या

रॉक स्टार से आ रहा है ये कमाल गाना. ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू. सो देयर इज रेडियो ऑलिव. कुछ देर में लौट कर आती हूँ और आज के वर्ड के बारे में बात करते हैं. जियो बिंदास.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: Hi, this is Air Rahman.
2: Air Rahman.
1: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
2: Geo Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: I'm in number one Radio Olive.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: सुरेश वाडकर और आशुताई की आवाज में सत्या मूवी से सपने में मिलती है ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपकी इस साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
1: और आज का जो वर्ड है मेरी डिक्शनरी से जो मैं लाई हूँ वो है पार्सिमोनियस PARSIMONIOUS पार्सिमोनियस एंड इसका बेसिकली मतलब होता है अ पर्सन जो कि बहुत स्टिंजी है और एक्सट्रीमली अनविलिंग है टू स्पेंड मनी इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल दिस पर्सन माइजरली और फ्रूगल और कंजूस बेसिकली So, example, he was so parsimonious towards his friends that they stopped inviting him for parties. Or the company's parsimonious nature did not go down well with the employees. These could be the examples. Next time, jab aap kisi kanjoos dost se mile, aur bole, bhai, aaj ki treat teri taraf se. तो कहना ब्रो स्टॉप बीइंग सो पार्सिमोनियस ओके आई नो किसी ना किसी का नाम तो आ चुका होगा जहन में उन्हें लिख के भेज दो पार्सिमोनियस अगर वो आपके अच्छे दोस्त हैं एंड यू हैव दैट रेपो कि आप जोक कर सकते हैं ठीक है वरना लड़ाइयां हो जाएंगी मेरा नाम आ जाएगा संतरे ये रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas. Shack Man ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और पूरा सोशल मीडिया रेक्स की बातें कर रहा है दो दिन से, है ना। हर जगह इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएं तो रेक्स का ही चर्चा चल रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड यू नो प्रमोटिंग देयर बिजनेसेस इस ट्रेंड को लेकर कि भाई पीपल आर लुकिंग फॉर रेक्स और उसके बदले में 100,000 रियाल का जो रिवॉर्ड है वो रखा गया है। दे हैव मेड फुल बिजनेस स्ट्रैटेजी अराउंड इट एंड इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बाकी रेक्स का अभी तक कुछ पता चला नहीं है, सो द 100,000 रियाल का जो रिवॉर्ड है इट्स स्टिल ऑन द टेबल गाइज, सर्च जारी रखिए। अलॉन्ग विद दैट अगर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो radioalive.qsd हैंडल फॉलो कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों भाई बंधु सबको बता दो कि अगर ऑलिव को आप लाइव सुनना चाहते हैं तो आपने बस कर लेनी है हमारी ऐप डाउनलोड। आप जहां भी हो दुनिया के किसी भी कोने में यू कैन लिसन टू अस लाइव थ्रू आर ऐप। प्ले स्टोर पे जाइए, रेडियो ऑलिव का ऐप है, डाउनलोड कीजिए और बस कनेक्टेड रहिए। सो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. फिलहाल वक्त हो गया मेरे जाने का. मेरी जान मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. वेंसडे का दिन होगा, खुशी थोड़ी और बढ़ जाएगी क्योंकि वीकेंड नजदीक है. यस, आई होप यू गाइज हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ. कोई भी छोटी मोटी बात हो तो ऐसे दिल से या दिमाग से, दोनों से नहीं लगाने का है, एक कान से सुनने का है, दूसरे कान से जाने देने का है. ठीक है, इसी में भलाई है यार हमारी. फालतू बैठ के सोचते रहते हैं और अपना ही मूड खराब कर लेते हैं, अपना ही दिन खराब कर लेते हैं. सो जस्ट डोंट डू दैट. एंड प्लीज वेदर से ज़रा बच के रहिएगा. डू नॉट गेट अंडर द वेदर, जैसे मेरा हाल रखा है इस वक्त. बहुत सारा फ्लूइड लीजिए, पानी वानी पीते रहिए और लाइट खाना खाइए. और अगर धूप से आ रहे हैं तो ठंडा पानी ना पिए, एसी के नीचे ना खड़े हो जाएं. ख्याल रखें अपना, सेहत है तो सब है. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.

Good morning. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai, yes, Life Must hai. Subah utne ka na apna ek alag feel hai. You know, वैसे तो मैं हर दिन आपको Midnight Lounge पे मिलती हूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं life की, Bollywood की, fashion की, trivias की, nostalgia की, कहानियों की. और आज सुबह सुबह जब मैं Life Must में आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार सुबह जल्दी उठने का भी अपना एक अलग feel है, जहाँ पर आपके सारे काम बड़े time से हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि बस ये भी हो गया, वो भी हो गया, अब office में ये करना है, वो करना है. अलग ही क्रिएटिविटी रहती है जब आप सुबह जल्दी उठते हो. बाय द वे, हर किसी का अपना एक क्लॉक सिस्टम होता है कि इतने बजे उठेंगे तभी जाके फ्रेश फील होगा, वरना अगर इससे पहले उठ गए तो अच्छा फील नहीं होने वाला. आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आई एम श्योर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और व्हाट्सएप नंबर इज सेम 3311063. खूब सारी बातें करने वाले हैं. बाय द वे, आपको पता है यहां पर मैं बात करी थी कतर टूरिज्म और ओल्ड दोहा पोर्ट ने ना अभी स्पेन में जो क्रूज में 2026 हुआ था, वहां पर इंटरनेशनल क्रूज ऑपरेटर्स के साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन किया है. फोकस है कतर को ग्लोबल क्रूज आइटनरीज में और स्ट्रांगली कनेक्ट करवाना, जहां पर ओल्ड दोहा पोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर, कतर की एयर कनेक्टिविटी, होटल्स और टूरिज्म एक्सपीरियंसेस सब एक साथ मिलकर काम करते हैं. एंड आई वाज लाइक यार यहां पर कितना कुछ होता रहता है ना. सो क्रूज पैसेंजर्स जो है वो सिर्फ शिप से उतरते नहीं है, वो कॉफ़ी पीते हैं, टैक्सी लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, साइट सीइंग करते हैं और फिर वापस शिप पर चले जाते हैं. मतलब एक डेस्टिनेशन की कहानी कभी कभी एयरपोर्ट से नहीं, पोर्ट से भी शुरू होती है. आपको मौका मिले आप क्रूज हॉलीडे चूज करने का, तो आप वो ट्रेडिशनल फ्लाइट वाला हॉलीडे चूज करोगे या फिर आपको लगता है कि नहीं यार क्रूज एक बार ट्राई करना चाहिए. बाय द वे, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है. यू टेल मी अगर आपने ट्राई किया है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल. स्टे ट्यून्ड. Bindas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस

0: अजीब सा सवाल पूछूं, अगर आज आपको पता हो कि आपकी एक भी फोटो नहीं खींची जाएगी तो क्या आप फिर भी अच्छे से ड्रेसअप करके आओगे? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्ट है। मतलब ये सवाल एक्चुअली मेरे जैसे लोगों के लिए है। भाई मुझे पता है कि अगर आज कोई इवेंट नहीं है, आज कुछ ऐसा नहीं होने वाला जहां पर कोई यू नो ऑफिस में आ रहा है, तो मैं बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालती रेडी होने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तैयार होते हैं, मतलब होते हैं। सोचिए वो फेवरेट परफ्यूम, वो इयररिंग्स, वो कुर्ता, वो शूज जो आपने सिर्फ इसीलिए पहने क्योंकि आपको खुद अच्छा लगता है। हम ना फैशन को बहुत बार दूसरों की नजर से देखते हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, फोटो में कैसा लगेगा, इंस्टाग्राम पर चलेगा या नहीं। लेकिन पर्सनल स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत वर्जन वो भी है जो कैमरा के बिना यू नो एग्जिस्ट करता है। सो कभी कभी हम किसी आउटफिट में सबसे अच्छे इसीलिए नहीं लगते क्योंकि वो ट्रेंडी है, बल्कि इसीलिए उसमें अच्छे लगते हैं क्योंकि खुद को अच्छा फील हो रहा था। सो आज का मिड यू नो सवाल जो है मेरा, मिड मॉर्निंग का सवाल, वो आपके लिए ये है कि आपके वार्डरोब में वो कौन सी चीज है जो आप सिर्फ खुद के लिए पहनते हैं, फोटो के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, बस अपने लिए। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311063। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल ओवर पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
1: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
0: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर।

फैशन की दुनिया में एक छोटी सी चीज फिर से बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन रही है, विच इज ब्रोच. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. हां जी, वही ब्रोचेस जो कभी मम्मी या नानी के वार्डरोब में आपको मिला करते थे. न्यूयॉर्क फिल्म वीक के फॉल 2026 स्ट्रीट स्टाइल में फ्लोरल ब्रोचेस के साथ बोल्ड पर्पल शेड और सिल्क फ्रिंज स्कार्फ्स जो है वो सब वापस लौट के आ रहे हैं और बहुत नोटिसेबल हैं. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट स्कार्फ, लेकिन ये स्कार्फ हमेशा से स्कार्फ नहीं थे. ये पहले बहुत यू नो ट्रेडिशनल चीज़ें हुआ करती थी. और फिर फैशन का ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है कि कभी ट्रेंड एक पूरा आउटफिट चेंज नहीं करता, बस एक छोटी सी चीज़ जो है वो काफ़ी रहती है. अब देखिए, एक ब्रोच जो है वो ब्लेजर पर लगाया, एक स्कार्फ जो है वो आपने आपके अटायर को चेंज कर देता है, एक बोल्ड पेयर ऑफ ग्लासेस जो है वो आपका पूरा लुक चेंज कर देते हैं, और सडनली सिंपल सा आउटफिट जो है वो पूरा मूड चेंज कर देता है. शायद इसीलिए ना ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको एक्स्ट्रा कहना थोड़ा सा अनफेयर है. कभी कभी एक्स्ट्रा ही पर्सनालिटी होती है. सो यू टेल मी, अगर आपको अपने एवरीडे आउटफिट में सिर्फ एक स्टेटमेंट पीस ऐड करना हो, चाहे वो कोई बैग हो, ज्वेलरी हो, सनग्लासेस हो या स्कार्फ हो, तो आप क्या करोगे? आई पर्सनली लाइक बैग्स एंड सनग्लासेस. यू टेल मी, आपकी चॉइस क्या है? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास रेडी
2: टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: ऑल दैट यू नीड।

सो आजकल थ्रिलर स्टोरीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं और हो रही हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स की नई सीरीज जो है वो अभी आई नहीं है, परिणीति चोपड़ा की है, और आई वॉज वंडरिंग कि ऐसी माँ का रोल वो प्ले कर रही हैं जो अपने मिसिंग चाइल्ड को ढूंढने में सालों लगा देती है। 24 सितंबर को ये सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही हूँ क्योंकि नेटफ्लिक्स उसे बहुत प्रमोट कर रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। जब सच और शक के बीच में ना लाइन ब्लर हो जाती है ना, तो आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, और यही भरोसा जो है वो उस मूवी में दिखाया गया है। सो थ्रिलर का ये आइडिया जो है ये रियल लाइफ में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कहते हैं कि आई ट्रस्ट यू, लेकिन ट्रस्ट ना एक्चुअली होता क्या है? किसी की बात मान लेना, उसकी इंटेंशंस पर भरोसा करना, या फिर मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस की अगर वो गलत भी हो तो वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी ना ट्रस्ट का ऑपोजिट डाउट नहीं होता, ट्रस्ट का ऑपोजिट सर्टेनिटी होती है। सो क्योंकि जिस चीज़ पर हमको एक्चुअली कंप्लीटली समझ

सो दिस इज फॉर माई बुक लवर्स जिन्हें हर दिन इंतजार रहता है कि मैं आज किस किताब के बारे में बताऊंगी. यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम है लाइफ मस्ट है. अली हेजलवुड की एक पॉपुलर रोमांस नॉवल है द लव हाइपोथेसिस अब स्क्रीन पर आ रही है. फिल्म में यहाँ पर आपको बहुत अच्छे स्टार्स दिखने वाले हैं और स्टोरी जो है वो ऑलम नाम की PhD स्टूडेंट और प्रोफेसर एडम के अराउंड होगी. अली एक फेयर रिलेशनशिप जो कि धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो दिखाने वाले हैं और फिल्म जो है वो कल प्राइम वीडियो पर आ रही है. लेकिन मेरा सवाल फिल्म से थोड़ा सा अलग है, क्या बुक के कैरेक्टर्स कभी फिल्म एक्टर्स जैसे हो सकते हैं? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. भाई जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हीरो कैसा दिखता है, उसकी आवाज़ कैसी होगी, वो हंसता कैसे होगा, उसका रूम कैसा होगा, मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं. फिर आती है फिल्म और डायरेक्टर कहता है कि नहीं जी अब आप मेरी इमेजिनेशन देखिए. अब बस यहीं से जो किताब के यू नो शौकीन लोग हैं उनकी कोट लग जाती है. मतलब आप ऑनेस्टली बताइए कि आप पहले किताब पढ़ना पसंद करते हैं या पहले मूवी देखना? क्योंकि अगर किताब पहले पढ़ ली है तो मूवी के बाद एक सेंटेंस ना ऑलमोस्ट गारंटेड है, बुक में ये बेटर था. मतलब हर कोई ऐसी ही बात करता है. यू टेल मी कि आपको किताबें ज़्यादा पसंद हैं या उसके ऊपर बनी मूवीज? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: इतने सारे मैसेजेस आए कि हर कोई बोल रहा था कि यार किताबें पढ़ने के बाद ना फिर वो मूवी देखने में मजा नहीं आता. सो यू हैव योर ओन इमेजिनेशन जहां पर आप खुद इमेजिन कर लेते हो. जैसे कि एक किताब थी जिसका नाम था फॉल्ट इन आवर स्टार्स, मतलब इतनी अमेजिंग किताब है. उसके बाद उसकी हॉलीवुड में भी मूवी आई, बॉलीवुड में भी आई, एंड एवरीबडी वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो स्टेशन 11 की ऑथर हैं, उनकी एक नई नॉवल आई है एग्जिट पार्टी, 15 सितंबर को ही रिलीज हुई है, कुछ ही टाइम पहले. सो स्टोरी जो है वो 2031 के फ्रैक्चर्ड अमेरिका से शुरू होती है और डबल शेडो वर्ल्ड और फ्रैक्चर्ड टाइमलाइन जैसे आइडियाज एक्सप्लोर करती है. और मुझे इसका बेसिक आइडिया बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है. व्हाट इफ अनदर वर्जन ऑफ योर लाइफ वाज हैपनिंग समवेयर, आपने कोई और करियर चूज किया होता, किसी और सिटी में शिफ्ट हो गए होते. ऐसी बहुत सारी किताबें हैं पहले भी, और ये भी किताब वैसे ही मिलती जुलती है. किसी और इंसान से मिले होते, क्या वो वर्जन ऑफ यू जो है वो ज़्यादा खुश होता. हम सब ना कभी ना कभी व्हाट इफ करते ही रहते हैं. सो इसीलिए ऐसी किताबें जो हैं वो काफी पॉपुलर हो जाती हैं. व्हाट इफ आई हैड सेड यस, व्हाट इफ आई हैड सेड नो, व्हाट इफ आई हैड स्टेड, व्हाट इफ आई हैड लेफ्ट, मतलब ऐसे सवाल बार बार मन में आते हैं. लेकिन शायद लाइफ का इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि हमें ऑल्टरनेटिव वर्जन देखने का कभी मौका ही नहीं मिलता. इसीलिए जो वर्जन हमारे पास है उसी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. अगर आपको अपनी ऑल्टरनेट लाइफ की एक सिर्फ 10 मिनट की विंडो मिल जाए ना, तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी लाइफ आप देखना चाहते हो. पर जो लाइफ आपके पास है आई एम श्योर वो बेस्ट है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

सो एक जमाने में फोन कॉल्स ना नॉर्मल होती थी, फिर टेक्सटिंग आई, फिर व्हाट्सएप, फिर वॉइस के नोट्स आ गए, और अब सिचुएशन ये है कि अगर किसी का कॉल आ जाए बिना मैसेज के तो भाई हेलो सब ठीक है ना, मतलब हम यही पूछते हैं एकदम से कैसे कॉल आ गया। हमने कम्युनिकेशन को इतना कन्वीनियंट बना दिया है कि कभी कभी डायरेक्ट बात करना ही अनयूजुअल लगने लगता है। ऐसे लगता है कि यार इसका इतने टाइम बाद कॉल क्यों आ रहा है भाई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। हमने ना कम्युनिकेशन को इतना कन्वीनियंट तो बना लिया, अब वॉइस नोट का अपना एक अलग चार्म है। आप सामने वाले की आवाज सुन सकते हो, एक्सप्रेशन फील कर सकते हो, और टाइपिंग का हेडेक भी नहीं होता। सो टेक्स्ट जो है वो सेफ है, आप सोचो, आप सोच सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और कॉल में कोई एडिटिंग नहीं है, जो फील हुआ वही बोल दिया। शायद इसीलिए कॉल जो है वो थोड़ी ज्यादा पर्सनल सी लगती है, इसीलिए हर कोई एक दूसरे को कॉल करना पसंद नहीं करता। सो आज आई वॉज थिंकिंग कि चलो इस पे सर्वे करते हैं, आप किस टीम में हो, कॉल वाली, टेक्स्ट वाली, वॉइस नोट वाली, या वीडियो कॉल वाले। बाय द वे वीडियो कॉल वाले लोग ना मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही क्लोज हो तो ही बढ़िया है, वरना हर किसी से वीडियो कॉल करना मुझे पसंद नहीं है। सो यू टेल मी, बाय द वे ये वॉइस नोट वाले ये लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि सारी बात एक बार में हो जाती है और समझ भी आ जाती है। सो ऑनेस्टली बताइए, नंबर इज सेम 3311063। आप भी अपने स्टाइल में बताइएगा, इफ यू लाइक कॉल देन यू कैन कॉल, इफ यू लाइक टेक्स्ट आप व्हाट्सएप कीजिए, वॉइस नोट भेजिए। अगर कोई कैन आई कॉल यू करके टेक्स्ट करे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है ये भी बताना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

सो फैशन का ना एक रूल समझ लीजिए, कभी किसी ट्रेंड को परमानेंटली डेड मत समझना, क्योंकि 2026 में बूट कट जीन्स फिर से कॉन्वर्सेशन में है। ये वही जीन्सेज हैं जो यू नो टाइट्स और नीज पर जाकर रिलेटिवली फिटेड होती हैं और नीचे जाकर हल्का फ्लेयर देती हैं, 90s और अर्ली 2000s की याद दिलाती हैं। बाय द वे यस्टरडे वॉज करीना कपूर्स बर्थडे और वो डेनिम इसीलिए मुझे याद आई। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और फैशन का ना इस साइकिल ना बड़ा फनी है, एक टाइम पर हम कहते हैं कि ये तो ओल्ड फैशन है, फिर कुछ साल के बाद वही पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, सेलिब्रिटीज और वही चीजें सडनली आपको विंटेज लगने लग जाती हैं। फैशन एक्चुअली कपड़ों से ज्यादा मेमोरी का गेम है। किस ट्रेंड को देखते ही आपको स्कूल या कॉलेज की याद आती है, एक जीन्स, एक पूरा एरा वापस आ जाता है। सो बूट कॉट जो है वो कमबैक कर रहा है या फिर नहीं, आप मुझे बताइए। बाय द वे मैंने जानवी कपूर को बहुत बार वैसे डेनिम्स में देखा है। और हाँ, जो जीन्स आपने 10 साल पहले संभाल कर रखी थी शायद वो अब विंटेज है, आउटडेटेड नहीं, आप उसे कभी भी पहन सकते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM एंड यू टेल मी योर फेवरेट फैशन 3311063 पर। You are listening Radio Olive और ये है Life Must है, जियो बिंदास।

0: भागे तेरे पीछे बावरा समन बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: 106.3 FM.
1: The ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
3: जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ऑल

0: आज का जो बुक कॉर्नर है ना, थोड़ा सा लिटरली है, मतलब यहाँ पर स्टोरी हुक बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउसकीपर, जो कि 17th of September को ही रिलीज हुई है. सो ऑथर का नाम है रोज टर्मैन. सो बेसिकली ये जो लेजेंडरी नॉवल है रेबेका, उससे फैसिनेटिंग कनेक्शन बनाती है. स्टोरी में दानी नाम की एक हाउसकीपर की जो मुलाकात है वो यंग राइटर से होती है, और फिर जो पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है वो इक्वली रेबेका के एक आइकॉनिक कैरेक्टर के क्रिएशन से कनेक्ट होता है. मुझे ना किताब का ये आइडिया बड़ा पसंद आया, व्हाट इफ द पर्सन यू थॉट वाज द विलन एंड हैड देयर ओन स्टोरी. हम जब कोई नॉवल पढ़ते हैं यूजुअली एक कैरेक्टर को जज करते हैं, अच्छा बुरा हीरो विलन ये सब सोच लेते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर के पास अपने वर्जन ऑफ द स्टोरी होती ही है, और शायद रियल लाइफ में भी थोड़ा ऐसा ही होता है. हर किसी की अपनी एक अलग स्टोरी है, हम उसकी एक अलग इमेज बनाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो इस किताब की जब मैं बात कर रही थी, तो हम किसी को एक सीन में देखकर पूरी कहानी डिसाइड कर लेते हैं, जबकि हो सकता है कि हमें सिर्फ उनकी कहानी का एक पेज पता हो, एक चैप्टर पता हो. सो आपके हिसाब से किसी पर्सन को समझने के लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉन्टेक्स्ट? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात है.

हमारी एक सबसे इंटरेस्टिंग हैबिट है इंस्टेंट रिएक्शन। मैसेज आया, फटाफट से रिप्लाई किया, किसी ने कुछ कहा आंसर कर दिया, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया ओपिनियन दे दिया, और कभी कभी बस एक सेकंड का पॉज मिसिंग होता है। सो इमेजिन आपको किसी इंपॉर्टेंट मैसेज का आंसर देना है और उससे पहले आपको 24 घंटे मिल जाए, नो गेस में रिप्लाई, नो एक्साइटमेंट में कमिटमेंट, ना कोई यू नो हर्ड होकर डिसीजन लेना, बस लेट मी थिंक अबाउट दिस वाला टाइम है आपके पास। यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, क्योंकि हर फीलिंग में ना इमीडिएट एक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही कोई मांगता है। कभी यू नो गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं होता, उस पर डिसीजन लेना जरूरी है। कभी सैडनेस सिर्फ सैडनेस नहीं होती, उस मोमेंट में लाइफ चेंजिंग कंक्लूजन निकालना जरूरी है। और कभी कभी जो बात रात को बहुत बड़ी लगती है सुबह उतनी बड़ी लगती नहीं है। सो आप किस टाइप के इंसान हो, रिप्लाई बिल्कुल इंस्टेंट करने वाले, वो रिप्लाई नाउ वाले, या फिर पहले मुझे थोड़ा सोचने दो फिर मैं रिप्लाई करती हूँ या करता हूँ, व्हाट्सएप करके बताइए 3311063 पर। और प्लीज रिप्लाई 24 घंटे के अंदर ही देना है, मतलब अभी ही करना है। सो बताइए मुझे फटाफट से, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है।

डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, आपके पास हर दिन बात करने का टाइम नहीं होता, लेकिन एक दोस्ती में कभी कभी मतलब कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन से नहीं बल्कि कंफर्ट से मेजर होता है. सो आप महीनों बाद मिलो और फिर भी कॉन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट हो जाए जहां आपने छोड़ी थी. सो आज का सवाल बहुत सा सिंपल है, आपके लिए रियल फ्रेंडशिप का साइन क्या है? रोज बात करना या हर सिचुएशन में बस अवेलेबल रहना, या फिर कितने भी गैप के बाद वो सेम कम्फर्ट वापस आ जाना. मेरे हो गया है जाने का टाइम, लेकिन जाते जाते आपसे जरूर कहूंगी कि दोस्ती बहुत ही खूबसूरत चीज है आपके लिए. यू नो, एक कम्फर्ट अगर कोई लेकर आता है तो वो कोई दोस्ती हो सकता है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. बस आप जाते जाते मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपके लिए दोस्ती का मतलब क्या है. आई एम देयर ऑन व्हाट्सएप, नंबर है 3311063. बहुत ही ब्यूटीफुल गाने आपके लिए लाइन अप किए हैं. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिरयानी खा के पेट निकल गया है और एप्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.
2: This is Amaya Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ। ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: आप सभी का वैसे एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही नए कैट मीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंटरनेट में वायरल होने वाला है। सो बेसिकली इस्तांबुल में जो है एक ट्रिप में गए थे कपल जो है और वहां पे उन्होंने देखा एक कैट जो उनके सीट में आके बैठा है। जब उन्होंने खाना देने से मना कर दिया तो उस कैट का एक पिक्यूलियर रिएक्शन था जिसको फोटो क्लिक करके लोगों ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, सोशल मीडिया में डाल दिया है। काफी बढ़िया रिएक्शन वैसे। अब कैट मीम्स जो है उनका एक अलग फैन बेस है। मुझे लगता है कैट मीम्स के लिस्ट में ये वाला नया मीम भी बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.
3: हुमा, हुमा, हुमा, हुमा, हुमा, हुमा, हुमा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक चीज मैंने देखी, 1959 में जो बीटल कार थी उसके अंदर एक कॉफी मेकिंग मशीन भी था, यानी कि आप गाड़ी चलाते चलाते कॉफी बना सकते थे, कॉफी का लुत्फ उठाते हुए ड्राइव कर सकते थे। और अभी के गाड़ियों से अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम की गाड़ियां कॉफी बनाती थी, और अभी की गाड़ियां जो हैं स्पेशली कुछ चाइनीज ईवी जो हैं काफी बढ़िया एक अपने हेडलाइट से प्रोजेक्टर की तरह चीजें लिख के स्क्रीन पे दिखा सकती है या फिर वॉल पे दिखा सकती है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया तरीके से इवॉल्व हो चुका है, मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार गाड़ी का जो एक्चुअल पर्पस है यानी कि ड्राइव करना, वो कितना ज्यादा कम हो चुका है और कितनी ज्यादा चीजें उसमें ऐड हो चुकी हैं कन्वीनियंस के लिए और कंफर्ट के लिए। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Only recharge.
0: Only recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी भी आप ऐसे इधर उधर देखते हो तो कुछ चीजों में एक फेस का पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करते हो? कभी कभी बादलों में, कभी स्विच बोर्ड में, कभी घुटनों में, इन्हें देखते वक्त कभी अगर आपको फेस दिखता है तो ये एक फॉर्म ऑफ विजुअल इल्यूजन है जिसका नाम है पेरेडोलिया। यहाँ पे ब्रेन जो है फेमिलियर पैटर्न्स को रैंडम और एम्बिगस ऑब्जेक्ट्स में जो है डिटेक्ट करता है, और इसलिए कभी कभी हमें किसी किसी रैंडम जगहों पे फेसेस दिख जाते हैं, चेहरे दिख जाते हैं। और इस चीज को फिर से मैं याद दिलाता हूँ, कहते हैं पेरेडोलिया। अगर आप ये करते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: There's something I wanna tell you, girl. I

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओनली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: और पूरे देश को
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
2: बिंदास।
3: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
4: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
3: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
4: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
5: आई रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स दिस इज रणवीर सिंह स्टे ट्यून्ड

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे 17 साल के एक लड़के ने इतनी बढ़िया चीज की है कि मैं क्या बताऊं आपको। सो 17 साल का एक बंदा है, वो एक कॉम्पिटिटिव स्विमर है यूके में। उसने देखा कि उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके घर के आसपास के जो बच्चे हैं, वो स्विमिंग क्लासेस नहीं जा पाते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो उसने फ्री में उन्हें स्विमिंग सिखाना शुरू कर दिया, और हंड्रेड्स ऑफ बच्चे जो हैं आजकल उसके पास जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। तो फ्री में उस बंदे ने बच्चों को एक लाइफ स्किल भी दिया है, और शायद किसी किसी को एक पैशन भी। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive Recharge.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक चीज मैंने देखी, यानी कि लोग जो हैं आजकल आईफोन 18 प्रो आईफोन डुओ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेना है नहीं लेना है, बहुत महंगा है, उस पैसों में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो मैं बता दूं आपको कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि आईफोन 18 प्रो या प्रो मैक्स लेने के प्राइस में थोड़ा सा पैसे और डाल के जो है आप डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस की ओर जो है जा सकते हैं। आप इंडोनेशिया जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, इजिप्ट घूम सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो काफ़ी अच्छे बजट में जो है ट्रैवल ऑप्शंस देते हैं। तो एक आईफोन लेना है या फिर दुनिया घूमना है, चॉइस आपकी है। और यही बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: प्रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: I'm not listening
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडी,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: Okay, I'm not with her.
1: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.
2: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्ज में हम आपके वर्क प्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.
3: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो वो उसको खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो प्यार अगर किसी इंसान से हो या किसी जानवर से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक इंसान ने जो है अपने पेट बर्ड के लिए कुछ किया। तो इनका जो बर्ड है उसका नाम है नित्या। ये एक पैरालाइज्ड लव बर्ड है, तो ये उड़ नहीं सकती है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसने कस्टम बिल्ट ड्रोन बनाया और एक छोटा सा एक केज जैसा रखा जहां पे वो नित्या को रख सकता है, और वो उस ड्रोन को उड़ाता है ताकि नित्या को जो है वापस फ्लाइंग वाली फील मिल पाए। सोच के देखिए भाई, यहाँ पे मुझे जेमी लैनिस्टर का एक कोट याद आता है जहां पे उन्होंने बोला है, थिंग्स वी डू फॉर लव। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। कभी कभी लोग कहते हैं ये भाई तुम्हारे अंदर का बच्चा बड़ा नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने रिसेंटली देखा। एक डच आर्टिस्ट ने गन के शेप में दिखने वाले वुडन ब्रांचेस को कलेक्ट किया है और बहुत सारे ब्रांचेस को कलेक्ट करके उन्होंने अपना कलेक्शन जो है एक आर्ट गैलरी में दिखाया है। और जब मैंने कलेक्शन देखा तो मैं भी सोचा कि यार मैं भी ये करता था, मगर मेरे ब्रांचेस तो मम्मी ने उठा के फेंक दिए थे। अगर उन्होंने नहीं फेंके होते तो शायद आज मैं भी वही कलेक्शन दिखा देता। मगर कोई बात नहीं भाई, कोई गल नहीं। यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कहीं नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minutes का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.theqatartalks.com पर. Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में। अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ट्रैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: धीरे धीरे टाटा बाबाई गुड बाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year.
2: Ye gana
3: say wow.

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: geleceğiz ahale yar. को जिया छोड़ के जाने को लिरिक्स में भूल जाती हूँ यार, लेकिन आ गई हूँ मैं जी सुनियो की दादी की हाल चाल सत सिमरन कौर थोड़े नाल 5:09
1: रुक जा दिल दीवाने पूछो तो मैं जरा
0: पूछूंगी तो बहुत सारी बातें क्योंकि 4 घंटे अपनी हैं जाने मन आपका आज का दिन 3311106 पर मुझे बता दीजिए चल घर चलें आपका यही हाल है ना अभी ऑफिस के बाद

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मज़राती।
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेमनी एग्स,
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मज़राती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: 96.3.
1: Olive Sano Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio Olive,
2: I'm the number one. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

बात करूंगी क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ, मैं कहीं सोने की तरह की हालचाल। सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल 5:22:17 स्टूडियो की घड़ी पे। देखो यार, बिग बॉस आजकल चल रहा है और बिग बॉस का हमको ये भी पता है कि भाई 3 महीने जो भी इस घर में रहता है कोई फोन अलाउड नहीं होता है। लेकिन अब ये 24 घंटे आपको पता है कि आप एक एप्लीकेशन पे इसको देख सकते हो। मतलब हम लोग जो हैं वो जो कट वाला एडिटेड वाला 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, लेकिन फिर भी आप एक वेबसाइट है जहां पर जो है देख सकते हो 24 घंटे की घर में क्या चल रहा है। उसमें से एक क्लिप जो है किसी ने वायरल की है जिसमें जो ईशा रिखी है जो कि बादशाह की एक्स वाइफ है वो फोन पे बात कर रही है। क्लियरली वो चीज फोन पे दिख रही है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये बिग बॉस तो स्क्रिप्टेड है यार।

0: तेरी रेडियो ऑलिव करके तेरी ये जियो फिनस।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यू घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026 कम्युनिकेट कनेक्ट एंड कॉन्कर
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिरयानी खा के पेट निकल गया है और एब्स के नाम पे सिर्फ फ्लैब्स बचे हैं। ड्रॉप दैट समोसा राइट नाउ।
1: Falcon Fitness Massive 7th branch is now open at Aldrian. High-tech gym, killer workouts and absolutely zero excuses. Falcon Fitness, ab fitness pakki hai.
2: Mere sapno ki rani kab aayegi tu?
3: Are rani ka to pata nahi, par legendary Kishore Kumar and Mukesh ke wahi evergreen gaane live Doha zarur aa rahe hain. Yes Doha, get ready for Dharohar Suron ki Amar Kahani. For the first time, India's finest tribute artists Mukhtar Shah, Alok Kadre and Priyanka Mitra are performing live with Grand Orchestra.
4: September 24th at Holiday Inn Doha. Retro vibes, pure nostalgia and 1,000 memories.
3: Log on to Q-Tickets or www.a2zetc.com or apni tickets aaj hi book kare. Dharohar miss mat karna.
5: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

भाई ये क्या चल रहा है यार, अलग लेवल का सीन। लेकिन एक न्यूज जो थी बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, रेंट अ गरबा पार्टनर फॉर 500 to 6.5। जी हाँ, इसके लिए भाई साहब अहमदाबाद में ये चीज चल रही है कि भाई अब गरबा पार्टनर जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको रेंट कर सकते हो। तो पुलिस ने वार्निंग जो है वो कर दी कि भाई ये चीज जो है वो गलत। ऑफकोर्स यार बहुत ज्यादा गलत है, ये चीज इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है गरबा खेलने के लिए, डजंट मीन कि आप उसको रेंट करके जाओगे। जब आप गरबा, मैंने एक चीज देखी है कि जब आप गरबा खेलने जाते हो ना तो ऐसी वाइब बन जाती है कि इतने सारे लोग हैं, अगर आपके पास कोई नहीं भी है ना तो वो लाइन से ऐसा पूरा चक्कर बना के गरबा खेलते हैं कि आपको किसी की जरूरत जो है ना वो महसूस ही नहीं होती है। और बहुत ही कमाल का, तो अभी तो रिसेंटली मैं अहमदाबाद जाके आई हूँ, अभी से तैयारियां जो है वो गरबा वगैरह की स्टार्ट हो चुकी है। सो या बड़ा ही माहौल सेट है। 5:49 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चला रही हूँ। सुंदरी रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

दिन भी क्या दिन थे, है ना। की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर।

0: देखते हैं मौसम पे कितना हकू है अपना।
1: मौसम आपके सुनो,
0: डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट टेम्परेचर जो है आज का 30 डिग्री सेल्सियस होने वाला है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 55% है। विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी ना पिछले दो तीन दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट कल भी जब मैं ऑफिस से बाहर निकली भाई साहब, ये चश्मे वालों को सबसे पहले पता लग जाता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो कितनी और कैसे चल रही है भाई। दो दिन से तो काफी ज्यादा बुरे हाल है और आज भी ह्यूमिडिटी जो है वो है, जब तक ये नहीं जाती तब तक ठंड नहीं आती, आएगी तो फिर मजे आएंगे बिल्कुल इस गाने की तरह।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। जैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
2: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
0: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा। रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
2: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट्स आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
3: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सबका ना एक कंफर्ट शो होता है, राइट? जो कि आप कभी भी देखो, कभी भी चला लो, आपका मन जो है वो लग जाता है जब आपको नहीं समझ लग रहा है कि कब क्या देखना है। 6:20:55 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है। सो इस तरह से मेरा एक शो है वैम्पायर डायरीज। सो वैम्पायर डायरीज जो है मेरा एक कंफर्ट शो है। नाम सुनने में काफी ज्यादा भयंकर लगता है लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाला शो है। सो मैंने कल से उसको वापस देखना स्टार्ट किया जब मुझे कुछ नहीं समझ लगता कि क्या देखना है और क्या करना है। सो या I love this Vampire Diaries। ये सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आपका कोई कंफर्ट शो है जो कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, 3311063 पर आप मुझे बताइएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पसंद है और वो जरूर देखते हैं। सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour। Song of the
2: Hour। क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Cool Song।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए द कतर टॉक्स इज बैक विद इट्स 21st एडिशन ऑन द हंट फॉर कतर्स नेक्स्ट चैंपियन स्पीकर 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक ऑन www.thekatartalks.com पर ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतर ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026 द कतर टॉक्स 2026 कम्युनिकेट कनेक्ट एंड कॉन्कर
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make your drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

ਹਾਂਜੀ उसके साथ साथ

पर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं और अगर आप चैट कर रहे हो किसी जेंजी से और उसने आपको HMU लिख के भेज दिया, ठीक है, सो मतलब तो उसका मतलब ये है कि हिट मी अप, यानी कि आप किसी को मैसेज करने के लिए जो है वो बोल रहे हो. सो या HMU ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है हिट मी अप. सो या यू हिट मी अप. ओके, मैं वेट कर रही हूँ 3311063 पर. सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
2: कारपेट के नीचे सीलिंग के जारों में और दीवार पर
1: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: स्ट्रेस ना सब लोगों को होता है, लेकिन थोड़ी सी हैप्पीनेस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 6:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है। सो ये हैप्पीनेस लाउंज के वीडियोस आपने हमारे सोशल मीडिया पे देखे होंगे, राइट? सो हैप्पीनेस लाउंज का ये है कि अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो ठीक है, HL जी या हैप्पीनेस लाउंज का अगर आप हमें मैसेज करते हैं, सो आपके ऑफिस या फिर आपकी कंपनी में हमारी टीम जो है वो आती है और हम मस्त वाले आपको काम से हटा के गेम्स खेलते हैं, थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा दिन डेडलाइंस, मेल्स, मीटिंग्स, क्लाइंट, ये सारी चीजों में फंसे रहते हो। लेकिन वो जो हैप्पीनेस लाउंज का वो जो टाइम होता है ना, 1-2 घंटे, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है और हर जगह पे ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी या फिर आपके ऑफिस में हम लोग आए, हमारी टीम आए और अपन फन करें, खाएं भी है और मजे करें, थोड़ी सी ऐश ही करें, है ना, तो आप हमें अभी कभी मैसेज कर सकते हो हैप्पीनेस लाउंज यानी कि HL और अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए 3311063 पर और फिर देखते हैं कि आप में से अब अगले ऑफिस हम कहां पे जाते हैं। कल भी हम एक जगह जाने वाले हैं लेकिन उसका वीडियो बहुत ही जल्दी सामने आएगा। रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो विंदास
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: अभी जाती हूँ और जाके वापस आती हूँ।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: बजके 31:40 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। बाहर चांद नजर आ रहा है क्या?
1: मेरा चांद मुझे आया है नजर।
0: सिर्फ एक ही चीज से इश्क है, वो है चांद। प्यार प्यार के चक्कर में बहुत सारे कांड हो जाते हैं।
2: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: लाइफ में एक सीख जो है वो जरूर ले लेना कि क्या होता है कि दो लोगों के झगड़े में जब एक तीसरा इंसान जब आता है ना, तो उस टाइम पे वो चीजें तो सॉर्ट करने की कोशिश करता है और फिर वो अच्छा भी होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब दो लोगों के बीच में जब झगड़ा चल रहा होता है ना, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सामने वाला जो है वो बुरा बन जाता है। जो बातें उस झगड़े को खत्म करने के लिए आपने बोली है, है ना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर सामने वाला जो है वो बुरा बन जाता है। यार एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी किसी के फटे में टांग मत अड़ाना, क्योंकि अगर आपने टांग अड़ाई तो आपकी टांग टूट सकती है यार। 7:32:40 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं रेडियो पे बोलूं, तो बस अपना नाम टाइप करके रखिएगा और मैं आपका नाम बोलने वाली हूँ। और आने वाले गानों में से एक और गाना बहुत ही खूबसूरत है यार। बाहर का मौसम क्या कह रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है ना यार, बस ये ठीक हो जाए उसके बाद तो सब सही है यार।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। ट्रैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

इश्क तो आप लोगों का भी है यार। मैगी जी सुनियो की तदगी हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ एंड क्विकली अब नेम गेम खेलने वाली आप लोगों के साथ। अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो क्विकली आप मुझे अपना नाम लिख के भेजिए, व्हाट्सएप करिए और मैं आपका नाम अभी रेडियो पर लेने वाली हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लिख के भेजिए। चलिए अब मैं आप लोगों के नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। आसमा, नावीद जी, सैमन जी, साजिद जी, थैंक यू सो मच, प्रिंसन जी, थैंक यू सो मच, नवीन जी, थैंक यू सो मच, पंकज जी, थैंक यू सो मच, श्री जी, थैंक यू सो मच, अदील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हाय मत लिखिए दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। सैद ज़ादा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। करीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आविज जी, अहमद खान जी, आदिल जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम क्यों लिख के भेज रहे हैं दोस्त मुझे? सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, क्विकली बताइए। आशिक हसन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिहान जी, थैंक यू सो मच। फुरकान अली फ्रॉम लखनऊ जी, थैंक यू सो मच। किरण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शेख जी, थैंक यू सो मच। नेहा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। भूपिंदर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। समीरा नशवा, आई होप मैं नाम सही बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्तों, फटाफट से अपना नाम लिख दो, फिर मत कहना कि मेरा नाम जो है वो नहीं लिया। राजीव जी, थैंक यू सो मच। जुल्फी जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। मलिक जी, थैंक यू सो मच। अब्रार जी, थैंक यू सो मच। नजीम उल्ला जी, थैंक यू सो मच। जमील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है। रेहा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बेटा, अब थैंक यू बोल दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
2: अरमान मलिक.
3: हमें नंबर वन.
1: 106.3 FM, Radio Olive, Geo Bindas.
0: Olive सुनो Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, हमें नंबर वन.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: तेरी रेडियो ऑलिव कोर के तेरी ये चाहिए बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Ready? To learn?
2: Yes!
1: To play?
2: Absolutely!
1: To grow?
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 8:30 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਖੜੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਮੈਸੇਜਸ ਕੇ ਲੀਏ। ਐਂਡ ਮੈਸੇਜਸ ਤੋਂ ਆਪ ਹਮੇ ਯੂ ਨੋ ਜਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਬ ਆਪ ਹਮੇ ਵਟਸਐਪ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੀਜੀਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਵੈਸੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਹੈ, ਸੋ अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो नहीं किया है और हमारे यूट्यूब के चैनल को फॉलो नहीं किया है और हमारी वेबसाइट है olive.qa पे अगर आप जाएंगे तो लाइव हमें वहां पे आप सुन भी सकते हैं। हमारी पूरी टीम है वहां पे, आप देख सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें जो है हम वहां पे हमारी वेबसाइट पे अपलोड करते रहते हैं। पॉडकास्ट भी होते हैं, इंटरव्यूज भी होती हैं और हमारी वेबसाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले इवेंट्स के बारे में। अगर यू नो आप इनकेस रेडियो पे नहीं सुन पाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू जो है आपको पता लग सकेगा। एंड बहुत सारे यू नो हमारी वेबसाइट पे जब कोई भी इवेंट होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी वेबसाइट के थ्रू होती है। एंड उसके साथ साथ आप हमारे जो है एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी आप अगर अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ना तो आप हमारी एप्लीकेशन को ऑन करके हमको सुन सकते हैं।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जी बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

बहुत ही प्यारा गाना अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है। 15 मिनट पहले कह रहे हैं कि कोई गाना प्ले हुआ था, वो गाना कौन सा है? देखो यार, 8 बजे से जो मैंने गाने प्ले किए हैं वो है मिलके बैठांगे, वो नहीं गाना है फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। उसके बाद सावरे गाना प्ले किया था फैंटम फिल्म से, उसके बाद मैंने प्ले किया था मेरे बिना फ्रॉम द मूवी क्रूक, ओके। उसके बाद गुजारा बागी 4 से प्ले किया था, और तुमसे बेहतर फिर प्ले किया था सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, एंड उसके बाद हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, एंड क्या यही प्यार है ये वाला गाना। आई होप इनमें से वो गाना हो जो कि आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको लिख के भेज दिया लेकिन इनको अभी क्लिक नहीं हो रहा है, नहीं समझ लग रहा, तो गाने इतने सारे दोस्त प्ले होते हैं तो वो मैं भी नहीं बता सकती हूँ। तो आई होप इसमें से आपको कोई ना कोई गाना जो है वो मिल जाए। बाकी के गाने, बाकी की बातें कल करेंगे शाम को 5 बजे, सो जबरदस्त इवनिंग्स में। और खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो। Hello।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास। चांदनी

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: चांदनी रातें, चांदनी रातें,
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
2: Oh my God, this is original.

Sunte în number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

दूसरों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।